मा सेंसेई का होम अप्लायंसर को खरीद मा आकर्षक उपहार तथा कैशबैक। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन मा 6 केजी एरियल, सेमी ऑटोमेटिक मा 1 केजी एरियल, एयर कंडीशनर मा इंस्टॉलेशन साथ इंस्टेंट कैशबैक पनी र बम्पर मा हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल। नागरिकता मात्र भए पुग्छ, सहज ईएमआई मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ।

0: BJ 淡见 विवाह पार्टी सेमिनार वा आरामदायी बास र मीठो खाना का लागि गैंडाकोट फन पार्क गैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडि गैंडाकोट 5 मोबाइल 98612204437
1: अहिले बिहानको 8 बज्यो
2: विजय एफएम

0: BJ 淡静 विवाह पार्टी सेमिनार वा आरामदायी बास र मीठो खानाका लागि गैंडाकोट फन पार्क गैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडि गैंडाकोट 5 मोबाइल 98612204437
1: अहिले दिउँसोको 3 बज्यो

0: गैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडि गैंडाकोट 5 मोबाइल 98612 24 37।
1: अहिले साँझको 5 बज्यो।